0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM

0: हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: हेलो बनारस।
0: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
2: 91.2 FM, Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
4: अल्लड़ पकड़

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: ईश्वर की ओर
4: उपासना।
3: बृहस्पतिवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 FM।

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras. Duhawali.

0: 91.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: तुलसी काया खेत है मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं बुवे सुलुने निदान। गोस्वामी जी कहते हैं कि शरीर मानो खेत है, मन मानो किसान है, जिसमें ये किसान पाप और पुण्य रूपी दो प्रकार के बीजों को बोता है। जैसे बीज बोएगा वैसे ही इसे अंत में फल काटने को मिलेंगे। भाव ये है कि यदि मनुष्य शुभ कर्म करेगा तो उसे शुभ फल मिलेंगे, और यदि पाप कर्म करेगा तो उसका फल भी बुरा ही मिलेगा।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: ईश्वर की ओर
1: उपासना
2: गुरुवाणी।
3: विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है, मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। ओ बैठे बैठे बस गलत बात समझिए। शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखाशक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो। शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग, उसमें विषयों की विशेष आसक्ति पैदा हो जाती है। वो ऐसी प्रियता होती कि बार बार हृदय को चूर चूर करती रहती है। तब देखो ना संसारिक पुरुषों को देखो ना, अब वो विषय सेवन करे चाहे ना करे, विषय राग उसका नाश कर चुका। ये बहुत समझने की बात है।
2: गुरुवाणी
0: ईश्वर की ओर
1: उपासना।

0: जब भी शिष्य राजी होता है गुरु प्रकट होता है।
1: ईश्वर की ओर
2: उपासना हर रोज सुबह 7 से 9 सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: आरसी बाबे एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. शुरू हो चुका है हमारा शो बोले तो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और हो भी क्यों ना, 9 बज चुके हैं और आज दिन है बृहस्पतिवार यानी गुरुवार. तो कहीं जाने का नहीं, बस सुनते रहने का लाउड स्पीकर मॉर्निंग वाला विद आरजे सुधांशु, क्योंकि यहाँ पर होती है ढेर सारी मस्त मस्त बातें और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर. तो कहीं जाने का नहीं, बस सुनने का 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु बोले तो बस यही है पक्का बनारसी.

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: Hey, बनारसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी,
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर
2: नमस्ते सलाम सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और आज अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से हम आप सभी को बता दें कि सुनो सुनो सुनो, अगर आप करना चाहते हो किसी को विश या देना चाहते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां, तो बस इसके लिए कहीं जाने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस व्हाट्सएप करने का 9839912912. इस पर आप कीजिए व्हाट्सएप. सुधांशु बैठा हुआ है ना आपके बिहाफ पर, करेगा उन्हें विश जिसे सुनेगा सारा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. तो भैया कहीं जाने का नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है सुधांशु, यही है पक्का बनारसी.

0: पंक्ति यात्रा, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घूमती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होता है। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, प्लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
3: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
4: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
3: अरे बेटा,
4: ये क्या कर रहे हो अंकल?
3: सुनो
4: तो,
3: अरे सुनो बेटा।
4: अंकल,
5: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
6: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
7: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
6: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
8: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
6: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
8: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
9: अरे भाई, और तेज भागा।
5: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
10: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
11: पक्का बनारसी।

बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.1

नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.5 FM हेलो बनारस पर। और अभी बोले तो टाइम हो चुका है हैप्पी वाला बर्थडे विश करने का। तो आज है डॉक्टर दीपक मौर्य जी का हैप्पी वाला बर्थडे। उनको बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है सुमित कुमार जी, यानी कि बोले तो इनको प्यारे प्यारे बाबू, प्यारे प्यारे बच्चे सुमित बाबू की तरफ से डॉक्टर दीपक जी को हो ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और साथ में है गीता मौर्य जी और मीरा मौर्य जी, इन सभी के बिहाफ पर सुधांशु ने कर दिया है डॉक्टर दीपक साहब को हैप्पी वाला बर्थडे विश। वैसे सुधांशु और हेलो बनारस की टीम तो दीपक बाबू के लिए यही कहेगी।

जी हाँ, बधाई हो बधाई। तो ये हो गया भैया डॉक्टर दीपक जी का हैप्पी वाला बर्थडे विश। अगर आप सभी लिस्नर करना चाहते हैं अपनों को विश या देना चाहते हैं बधाइयां, तो हमें कीजिए व्हाट्सअप 9839912912 पर। हम करेंगे आपके बिहाफ पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, वही दार्जी सुधांशु बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: ऐसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी हमने विश किया है डॉक्टर दीपक को, क्योंकि उनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे. उनको बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है सुमित बाबू का, गीता मैडम और मीरा मैडम का. इन सभी के बिहाफ पर हमने कर दिया डॉक्टर दीपक को हैप्पी वाला बर्थडे विश. अगर आप भी अपनों को करना चाहते हो विश या देना चाहते हो उन्हें बधाइयां, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर. हम करेंगे आपके बिहाफ पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु. बोले तो यही है पक्का बनारस.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
4: डॉक्टर साहब, सुना है आपके पड़ोसी कोमा में चले गए।
3: देखो यार, जिनके पास पैसा होता है वह कहीं भी जा सकता है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।

बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है पक्का बनारसी.

हाइट्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM.

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: अरे सुनो
1: गलत है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी। मेरिडिन IVF निसंतान दंपति अब ना हो निराश। अब आपके आंगन में भी गूंजेंगी किलकारियां। किसी भी कारणवश अगर हो निसंतान था तो उसके इलाज के लिए पहुंचे मेरिडियन हॉस्पिटल,
3: जहां आपको अपने शहर में ही मिलती है बेहद कम दाम पर IVF ICSI की सुविधा। अब नहीं रहेगी कोई भी गोद सूनी। मेरिडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, आशापुर, वाराणसी। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल 9196284677777।
0: बेटा A+B का होल स्क्वायर क्या है?
4: A² + B² + 2AB।
0: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
5: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: पंक्ति यात्रा। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है।
0: पंक्ति यात्रा।

बाबी एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.

वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: अरे सुनो
3: गलत
2: तो,
3: है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे मंजू, गुड़िया को कुदाल लेकर कहाँ भेज रही हो?
3: अरे मास्टर नी जी, घर गांव का काम धंधा नहीं सीखेगी तो ससुराल में गुजारा कैसे होगा?
5: अरे मंजू, देश और समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और तुम हो कि अभी तक ससुराल में ही अटकी पड़ी हो। अब लड़का हो या लड़की, सब पढ़ेंगे एक साथ और गढ़ेंगे नया इतिहास, क्योंकि बनारस में खुल गया है दिव्य डामन पब्लिक स्कूल, जहां मिलती है कम फीस में बेहतर और अच्छी पढ़ाई।
3: ठीक है मास्टर नीजी, मैं आज ही गुड़िया का दाखिला दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में कराती हूँ।
5: ये की ना अच्छी बात।
6: अगर आप भी देखना चाहते हैं अपने बच्चों में नई उड़ान, तो आज ही एडमिशन कराएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोशी रोड, पांडेपुर, वाराणसी।
7: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
8: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
9: अरे भाई और तेज भागा।
4: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
10: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
11: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
10: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: बनारसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर. कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: पंक्ति यात्रा, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घूरती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहां, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होता है। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं। मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
3: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
4: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
3: अरे बेटा,
4: ये क्या कर रहे हो अंकल?
3: अरे सुनो
4: गलत
3: तो,
4: है ये।
3: अरे सुनो बेटा
4: अंकल।
5: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 एफएम हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और

0: फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मरीडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
1: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
6: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
7: डॉक्टर साहब, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ तभी मेरा साला बीच में आ जाता है, मैं क्या करूँ?
6: व्हाट अ जेठालाल सुंदर वाला क्रश। देखो यार, तुम इस बार ट्रक चलाने का काम शुरू कर दो, शायद इस बार तुम्हारी किस्मत साथ दे दे भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी, पक्का
0: बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
4: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
5: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
4: अरे बेटा,
5: ये क्या कर रहे हो अंकल?
4: सुनो
5: गलत
4: तो,
5: है ये।
4: अरे सुनो बेटा
5: अंकल।
6: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
7: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
8: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
9: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
8: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
10: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
8: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
11: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
12: अरे भाई और तेज भागा।
6: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
13: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। ओहो, व्हाट अ बिजी डे।
14: डॉक्टर साहब, मेरे फोन का सिम नहीं चल रहा, मैं क्या करूं?
13: ओह, दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो यार, अभी तुम्हारा सिम बहुत छोटा सा है, जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसे जिम्मेदारी का एहसास होगा, फिर वो चलना भी सीख जाएगा भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
15: पंक्ति यात्रा।
16: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
17: प्रस्तुत पंक्तियाँ सोहन लाल त्रिवेदी द्वारा रचित है।
15: पंक्ति यात्रा।
18: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
19: डन
18: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
19: नहीं।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: Yes.
1: Hello, Barada.
0: 91.2 FM. Hello, Bananas.
1: Hello, Bananas.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: पंक्ति यात्रा, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घूलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी, पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा, यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होता है। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहां कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी।
5: ओहो, व्हाट अ बिजी डे।
6: डॉक्टर साहब, ये गारंटी क्या होती है?
5: व्हाट अ चाची 420 वाला क्वेश्चन। देखो यार, जो अपने अंकल की आंटी नहीं होती वो गारंटी होती है यार।
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर नाथी।
5: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
7: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
8: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
7: अरे बेटा,
8: ये क्या कर रहे हो अंकल?
7: सुनो
8: गलत
7: तो,
8: है ये।
7: अरे सुनो बेटा
8: अंकल।
9: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM, हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
10: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
11: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
10: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, प्लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
12: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
13: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
14: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
13: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
15: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
16: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
17: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
18: अरे भाई, और तेज भागा।
9: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM, हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी। अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और शुरू हो चुका है हमारा शो बोले तो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में बात होगी बड़ी ही खास फिल्म, 1962 की बनी हुई फिल्म आरती, जो एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है जिसका डायरेक्शन किया फणी मजूमदार साहब ने और प्रोडक्शन टीम संभाली थी राजश्री प्रोडक्शन ने। उसके प्रोड्यूसर थे उस समय ताराचंद बड़जात्या साहब, जिन्होंने बाद में ढेर सारी फिल्में बनाई जैसे दोस्ती, मैंने प्यार।

गया हम आपके हैं कौन। इसके मुख्य कलाकारों की बात करें तो अशोक कुमार बोले तो दादा मोनी, और साथ में है प्रदीप कुमार, शशिकला, डॉक्टर आरती की भूमिका में मीना कुमारी, गीत लिखे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत दिया महान संगीतकार रोशन जी ने।

बातें आज चलेंगी सिर्फ और सिर्फ आरती फिल्म के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: हॉलीवुड से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में चल रही हमारी फिल्म 1962 की रिलीज हुई आरती, जो अपने दौर की बेहद सेंसिटिव महिला केंद्रित फिल्मों में गिनी जाती है, जिसका डायरेक्शन किया फणी मजूमदार साहब ने और राजर्षी प्रोडक्शन इसके प्रोड्यूसर थे ताराचंद बड़जात्या साहब। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये थी कि मीना कुमारी का इमोशनल एक्टिंग बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया। उन्होंने एक आदर्शवादी महिला यानी डॉक्टर आरती का किरदार निभाया, जो उस दौर के हिसाब से काफी मॉडर्न और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर माना गया। फिल्म के हीरो की बात करें तो दौदा मुनि, अशोक कुमार जी और प्रदीप कुमार के बीच इमोशनल टकराव की कहानी इसकी जान थी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों हीरो ने अपनी एक्टिंग को बिल्कुल अलग अंदाज में, जिससे स्क्रीन पर टेंशन और इफेक्ट बहुत ज्यादा लगे। वैसे ये फिल्म गुजराती नाटक संस्कार लक्ष्मी पर आधारित मानी जाती है। उस समय साहित्य और थिएटर से प्रेरित फिल्में कम बना करती थीं। ड्रामेटिक सीन ज्यादा होते थे उस समय के सिनेमा में। ऐसे में आरती को एक गंभीर सामाजिक ड्रामा के रूप में देखा गया। संगीत दिया फिल्म का रोशन ने और गीत लिखे मजरूह सुल्तान पूरी साहब ने। रोशन के संगीत ने इसमें इमोशनल डेप्थ और क्लासिकल म्यूजिक की झलक को दर्शकों के सामने उड़ेल दिया।

तो बातें हमारी इसी तरह चलती रहेंगी, इंटरेस्टिंग वाली, आरती फिल्म से जुड़ी हुई, कहीं जाइएगा नहीं, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु, बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज हम बात कर रहे हैं 1962 की रिलीज हुई फिल्म आरती। उस दौर के सिनेमा में हीरोइन केवल लव स्टोरी तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आरती फिल्म में महिला के आत्मसम्मान, उसके प्रोफेशनल और वैवाहिक संघर्ष की गंभीरता को दिखाया गया। यही कारण है कि इस फिल्म को अपने समय की आगे की फिल्म बताया गया और शशिकला ने इसमें असिस्टेंट की भूमिका निभाई, लेकिन उनके अभिनय को काफी ज्यादा सराहा गया। वैसे शशिकला हमेशा ग्लैमरस या फिर नेगेटिव किरदार में नजर आती थीं, लेकिन आरती में उनका किरदार बिल्कुल अलग अंदाज में प्रस्तुत हुआ। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट थी, इसके बाद भी काफी प्रभावशाली मानी जाती है। खासकर हॉस्पिटल और घरेलू सीन में जो लाइटिंग दिखाई गई उसमें वो क्लासिकल हिंदी फिल्मों का पहचान बन गई। अब बात करते हैं इस फिल्म के एक गाने की। इस फिल्म का गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और संगीत बनाया रोशन जी ने। इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना

लिया ये गाना फिल्माया गया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की सबसे रोमांटिक युगलबंदियों के साथ। संगीतकार रोशन साहब ने इस गीत की धुन को बहुत ही सॉफ्ट और कन्वर्सेशन स्टाइल में बनाई, जिससे ऐसा लगे कि दो लोग आपस में अपनी इमोशंस को बांट रहे हैं। रिकॉर्डिंग के दौरान रफी साहब और लता जी को माइक से काफी दूरी से बोलना पड़ता था, यानी उनको अपने गाने के संवाद दूर से बोलने पड़ते थे। उस दौर में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग तो हुआ नहीं करती थी, ऐसे में पूरी टीम एक साथ लाइव रिकॉर्डिंग करती थी और एक भी गलती हो जाए तो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ती थी। इस गीत की ऑर्केस्ट्रेशन में हल्की वायलिन और फ्लूट का इस्तेमाल जानबूझकर रखा गया, जिससे मीना कुमारी की स्क्रीन इमेज उस तरह से दिखाई दे जिससे लोगों को दर्द और सॉफ्टनेस की फीलिंग आ सके। तो बातें हमारी चलती रहेंगी इसी तरह से। आज आरती फिल्म के बारे में कहीं जाइएगा नहीं, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस विद आरजे सुरांजो, बोले तो पर्दे के पीछे यही है पक्का बनारसी।

0: आवेग मध्यम हो चला है, एक हल्का सा धुंधल का था कहीं कम हो चला है। ये शिला पिघले न पिघले रास्ता नम हो चला है। क्यों करूं आकाश की मनुहार, अब तो पथ यही, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन फूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक समझौता हुआ था रोशनी से टूट जाए, आज हर नक्षत्र है अनुदार, अब तो पथ यही। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है, ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते इरादों में चढ़ी है, कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है, अब तो पथ यही है।
1: प्रस्तुत पंक्तियाँ दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है। कुमार द्वारा पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा।
2: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
3: डॉक्टर साहब, आजकल लोग फोन पर क्यों लगे रहते हैं?
2: दैट वाज अ टेलीफोनिक क्वेश्चन। वो इसलिए कि अगर वो चार्जर से लगेंगे तो उन्हें करंट लग सकता है भाई।
4: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
2: ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।
5: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
6: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
5: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
6: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
7: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
8: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
9: पक्का बनारसी।
1: पंक्ति यात्रा।
0: देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट भी कई रंग के लाते हैं, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चाहते हैं, मैं ही हूँ गरीबनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं, कैसे करूं कीर्तन मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं, नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई, पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है इसे चढ़ाने आई हूँ, चरणों पर अर्पित है इसको चाहे तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो।
1: प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा, पंक्ति यात्रा, पंक्ति।
5: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
6: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
5: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
6: जो आज्ञा महाराज।
5: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
6: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
7: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
8: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
9: पक्का बनारसी।
10: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
11: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
10: अरे बेटा,
11: ये क्या कर रहे हो अंकल?
10: अरे सुनो,
11: गलत है ये।
10: अरे सुनो बेटा।
11: अंकल,
12: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
13: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
14: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
15: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
14: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
16: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
17: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद RJ सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM टू 3 PM एंड 9 PM टू 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
18: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1962 की रिलीज हुई फिल्म आरती, जिसके मुख्य कलाकार मीना कुमारी, साथ में दादा मोनी, अशोक कुमार साहब और प्रदीप कुमार, साथ में शशिकला, जो नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं, ग्लैमरस अंदाज उनकी एक पहचान होती थी। लेकिन इस फिल्म में बड़ी ही हट के उन्होंने एक्टिंग की, जिसकी बहुत ज्यादा सराहना मिली। इस फिल्म का संगीत दिया रोशन साहब ने और गीत लिखे मजरूर सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना,

ये गाना फिल्माया गया मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन मखमली आवाज में। सॉफ्ट रोमांटिक गायकी का एक अलग ही एग्जाम्पल माना जाता है। रोशन साहब ने रफी जी से कहा कि आपकी आवाज में शायरी का एहसास होना चाहिए, इसलिए गाना सामान्य फिल्मी अंदाज से थोड़ा सा अलग गाइएगा। रिकॉर्डिंग में ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा कंपैरेटिवली धीमा रखा गया, जिससे रफी साहब की प्रोनंसिएशन बिल्कुल साफ साफ लोगों को सुनाई दे सके। इस फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे, धुन इतना संतुलित रोशन साहब ने रखा कि आरती फिल्म के गाने लोकप्रिय ही नहीं हुए बल्कि साहित्यिक क्वालिटी के लिए भी सराहे गए। आरती फिल्म को बनाने में लगभग 25 लाख रुपए तक खर्च हो गए और कमाई की

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: मुताबिक हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद RJ सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM टू 3 PM एंड 9 PM टू 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
6: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1962 की रिलीज हुई फिल्म आरती, जिसके मुख्य कलाकार मीना कुमारी, साथ में दादा मोनी अशोक कुमार साहब और प्रदीप कुमार, साथ में शशि कला जो नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं, ग्लैमरस अंदाज उनकी एक पहचान होती थी। लेकिन इस फिल्म में बड़ी ही हट के उन्होंने एक्टिंग की, जिसकी बहुत ज्यादा सराहना मिली। इस फिल्म का संगीत दिया रोशन साहब ने और गीत लिखे मजरूर सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना अब

ये गाना फिल्माया गया मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन मखमली आवाज में। सॉफ्ट रोमांटिक गायकी का एक अलग ही एग्जाम्पल माना जाता है। रोशन साहब ने रफी जी से कहा कि आपकी आवाज में शायरी का एहसास होना चाहिए, इसलिए गाना सामान्य फिल्मी अंदाज से थोड़ा सा अलग गाइएगा। रिकॉर्डिंग में ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा कंपैरेटिवली धीमा रखा गया, जिससे रफी साहब की प्रोनंसिएशन बिल्कुल साफ साफ लोगों को सुनाई दे सके। इस फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे, धुन इतना संतुलित रोशन साहब ने रखा कि आरती फिल्म के गाने लोकप्रिय ही नहीं हुए बल्कि साहित्यिक क्वालिटी के लिए भी सराहे गए। आरती फिल्म को बनाने में लगभग 25 लाख रुपए तक खर्च हो गए और कमाई की इसने 1 करोड़ से ऊपर, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस दौर के हिसाब से इसे सफल फिल्मों में गिना जाता है और राजश्री प्रोडक्शन को इससे ढेर सारी क्रेडिबिलिटी मिली। 1962 में रिलीज हुई फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के बीच आरती अपनी एक अलग माइलस्टोन तय किया। उसने अपनी पहचान बनाई। उस समय मिस्टीरियस रोमांटिक फिल्मों का दौर बढ़ रहा था, लेकिन आरती की इमोशनल स्टोरी और फीमेल सेंट्रलाइज्ड स्टोरी ने बड़ा ही सफल फिल्म बनने का ख्वाब अपना पूरा किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी गई। इस समय फिल्में तो बहुत बन रही हैं, लेकिन आरती जैसी इमोशनल स्टोरी कम बना करती हैं। आज पर्दे के पीछे में सुधांशु के साथ आरती फिल्म के साथ बस इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। अगली बार हम होंगे आपके साथ एक नई कहानी लेकर, एक नया किरदार लेकर। तब तक सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी।

और हंसी है, यहाँ दंगा शोर नहीं है, हर एक तन्हाई मेरी जा, मेरे यहाँ में आ, ना भमरा ना कोई कुल, अकेला

0: भाई क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
1: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
2: अरे भाई और तेज भागा।
3: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
4: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
5: पक्का बनारसी।
3: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1962 की रिलीज हुई फिल्म आरती, जिसके मुख्य कलाकार मीना कुमारी, साथ में दादा मोनी अशोक कुमार साहब और प्रदीप कुमार, साथ में शशि कला जो नेगेटिव किरदारों के लिए जानी जाती हैं, ग्लैमरस अंदाज उनकी एक पहचान होती थी। लेकिन इस फिल्म में बड़ी ही हट के उन्होंने एक्टिंग की, जिसकी बहुत ज्यादा सराहना मिली। इस फिल्म का संगीत दिया रोशन साहब ने और गीत लिखे मजरूह सुल्तानपुरी जी ने। इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना अब

ये गाना फिल्माया गया मोहम्मद रफी साहब की बेहतरीन मखमली आवाज में। सॉफ्ट रोमांटिक गायकी का एक अलग ही एग्जाम्पल माना जाता है। रोशन साहब ने रफी जी से कहा कि आपकी आवाज में शायरी का एहसास होना चाहिए, इसलिए गाना सामान्य फिल्मी अंदाज से थोड़ा सा अलग गाइएगा। रिकॉर्डिंग में ऑर्केस्ट्रा को थोड़ा सा कंपैरेटिवली धीमा रखा गया, जिससे रफी साहब की प्रोनंसिएशन बिल्कुल साफ साफ लोगों को सुनाई दे सके। इस फिल्म के गाने मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखे, धुन इतना संतुलित रोशन साहब ने रखा कि आरती फिल्म के गाने लोकप्रिय ही नहीं हुए बल्कि साहित्यिक क्वालिटी के लिए भी सराहे गए। आरती फिल्म को बनाने में लगभग 25 लाख रुपए तक खर्च हो गए और कमाई की इसने 1 करोड़ से ऊपर, जो आज की तारीख में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस दौर के हिसाब से इसे सफल फिल्मों में गिना जाता है और राजश्री प्रोडक्शन को इससे ढेर सारी क्रेडिबिलिटी मिली। 1962 में रिलीज हुई फिल्म ने कई बड़ी फिल्मों के बीच आरती अपनी एक अलग माइलस्टोन तय किया, उसने अपनी पहचान बनाई। उस समय मिस्टीरियस रोमांटिक फिल्मों का दौर बढ़ रहा था, लेकिन आरती की इमोशनल स्टोरी और फीमेल सेंट्रलाइज्ड स्टोरी ने बड़ा ही सफल फिल्म बनने का ख्वाब अपना पूरा किया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी गई। इस समय फिल्में तो बहुत बन रही हैं, लेकिन आरती जैसी इमोशनल स्टोरी कम बना करती हैं। आज पर्दे के पीछे में सुधांशु के साथ आरती फिल्म के साथ बस इजाजत दीजिए। आप सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM। अगली बार हम होंगे आपके साथ एक नई कहानी लेकर, एक नया किरदार लेकर। तब तक सुनते रहिए हेलो बनारस 91.2 FM विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
1: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
2: अरे भाई और तेज भागा।
3: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
4: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
5: पक्का बनारसी।
3: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास। अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
3: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपने आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
2: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
3: ड्रो आज्ञा महाराज।
2: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
3: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
4: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
0: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: यूपी बिहार के शान भोजपुरिया लोगन के जान आप सब खातिर हम ले आयल बानी भोजपुरी तड़का, जहां आप सबन के मिली भोजपुरी के हर मिठास से भरल खाटी भोजपुरी गाना। तो आज आई हमने के साथे सुनत रहे 91.2 FM हेलो बनारस पर रोज सांझे 4 से 5 बजे भोजपुरी तड़का, हमार भोजपुरी हमार गौरव।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
1: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
2: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
1: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
3: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
4: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
5: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
4: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
5: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
4: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
5: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुंचे इंटरनेशनल लेवल तक।
4: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
5: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
4: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
6: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य

0: हमारी प्राथमिकता।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
2: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।

0: मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ लगे तो बुरा क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मिर्जा बेग असदुल्ला खान मिर्जा गालिब की है।
1: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 एफएम से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
2: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे
3: डॉक्टर साहब, ये सूरज के निकलते ही प्रकाश कहाँ से आ जाता है?
2: व्हाट अ लाइटनिंग क्वेश्चन। देखो यार, प्रकाश सूरज का दोस्त है, तो यार सूरज के निकलते प्रकाश भी निकल जाता है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
4: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
4: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
3: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
4: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
3: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
4: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
3: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
4: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
3: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
5: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल, लेड़ूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
0: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
7: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
0: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
8: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
0: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
9: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
10: अरे भाई और तेज भागा।
2: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: भक्ति यात्रा।
1: देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट भी कई रंग के लाते हैं। धूमधाम से साजबाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चाहते हैं। मैं ही हूँ करीबने ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। पूजा और पूजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है

0: साहब, ये गारंटी क्या होती है?
1: व्हाट अ चाची 420 वाला क्वेश्चन। देखो यार, जो अपने अंकल की आंटी नहीं होती वो गारंटी होती है यार। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कॉन्फर्मेशन करता है भाई।
2: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: अच्छा
1: बैटमैन और सुपरमैन नहीं, असली सुपर हीरो तो ये हैं। 91.2 FM, हेलो बनारस को दोस्तों, ट्यून इन किया है आप सभी ने। और भाई गर्मी इतनी पड़ रही है कि भाई खाना ना आपको गैस पे पकाने की कोई जरूरत नहीं है, आप धूप में रख दीजिए अपने आप पक जाएगा। लेकिन इस गर्मी में, इस भीषण जो है समर के सीजन में भी कुछ ऐसे लोग

ना भाई, जो नहाते नहीं हैं, तो उन्हीं को मैं कहती हूँ कि आप ही हैं सुपर ह्यूमन और आप ही करेंगे मानवता की भलाई पाने बजा के। हाँ भाई, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके भी अगल बगल या आस पास में कोई ऐसा दोस्त या फिर ऐसा कोई यार है ना आपका, तो आप मुझे पिंग करके या फिर कॉल करके बता सकते हैं उनके बारे में ऑन माई नंबर दैट इज 9839912912 पे, या फिर आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट @RJAmisha पर भी मैसेज कर सकते हैं। नाम की स्पेलिंग में लास्ट में डबल ए है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना, तो तैयार हो जाइए। मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
1: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
0: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
1: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
0: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
1: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
0: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
1: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
0: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल।

0: जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

भाई स्वागत तो हो चुका है, काम कब होगा? हेलो बनारस को किया है दोस्तों, आप सभी ने ट्यून इन। और काम वाली बातचीत जब चल ही रही है तो हम बात कर लेते हैं इस पर कि वाराणसी में फिलहाल क्या क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों आज की जो डेवलपमेंट न्यूज है उसमें से एक बड़ी ही जो इम्पोर्टेंट अपडेट है कि जो वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और जो BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने एक इनिशिएटिव लिया है कि फ्यूल का जो हमारा अभी दिक्कत चल रहा है उसको देखते हुए उन्होंने 100 ई बाइक्स ऑर्डर की हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए और उनका जो संचालन होगा वो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के थ्रू ही होगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामने घाट एरिया में पोर्ट डेवलपमेंट का काम जो है उसको भी मंजूरी मिल चुकी है। और ये जो इनिशिएटिव है ये नो फ्यूल डे को लेते हुए जो BLW का पहले वाला इनिशिएटिव था उसको अब सैटरडे की जगह हर दिन कोशिश की जाएगी कि सैटरडे की जगह हर दिन हम जो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यानी कि EVs को ही यूज करें अपने संचालन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। और दोस्तों आपसे भी देखो यार मेरी गुजारिश है कि फ्यूचर के लिए ना एनर्जी को थोड़े बचा के चलो, कोशिश करो कि बिजली जितनी कम हो सके उतना यूज करो और फ्यूचर जनरेशन के बारे में थोड़ा सा तो सोच लो। फिलहाल सुनते रहो 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: भाई जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ ही गई। 91.2 FM, हेलो बनारस पर दोस्तों, मैं फिर से एक बार आपसे जुड़ चुकी हूँ आपके अपने शो इवनिंग अप शो विद आरजे अमीशा में। और दोस्तों मैंने कुछ ही देर पहले आप सभी से सवाल किया था, आप सभी से जवाब मांगा था कि क्या है आपके कोई लाइफ में ऐसा सुपर हीरो जो इस भीषण गर्मी के मौसम में भी नहीं नहाता है जी। तो आपका जो मुझे रिस्पॉन्स आया है ना, वो मैं सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ।
2: अरे हाँ भाई, ऐसे लोग सच में होते हैं। ये तो मुझे तब जाना जब एक फ्रेंड्स मीटअप में एक फ्रेंड काफी बातें बना रहा था कि नहाना कितना जरूरी है और कितना मजा आता है ठंडे पानी से नहाने में। और तभी उनकी मम्मी का चिल्लाते हुए फोन आता है कि ये भैया तनी नहा धोला तो निकला शहर घूमे।
1: मतलब वो असल में नहीं नहाता था, वो बस डिंगे मारता था।
2: हाँ एग्जैक्टली।
1: भाई इनकी कहानी तो बड़ी ही फनी निकली, लेकिन दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा ही कुछ किस्सा, ऐसी कोई कहानी है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। सुनते रहिए 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: तेरी जुबान बहुत चलती है सूर्या।
1: हाथ ज्यादा चलता है। 91.2 FM, हेलो बनारस, पर मैं हूँ आपकी अपनी आरजे अमीशा। और चाहे जुबान हो या फिर हाथ, दोनों चलाना ना आज के जमाने में बहुत जरूरी है आपकी हेल्थ के लिए। और हेल्थ का रामबाण इलाज ना एक ही है, जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। इसे करने से वेट मैनेज होता है, मेंटल क्लैरिटी आती है, पोस्चर सही होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है, स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। और भाई अब क्या मेरी प्रॉपर्टी लोगे? सुनते रहो 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: चुप चाप।
1: भैया इंसान हूँ, कोई कॉल सेंटर नहीं। 91.2 FM, हेलो बनारस, पर मैं हूँ आरजे अमीशा। और मेरा ऐसा मानना है ना कि लोगों की अगर अतरंगीनियत कम हो जाए तो भला ना हो जाए इस दुनिया का। मतलब अपने 9 से 5 के जीवन में अगर आप सोचो कि दो पल चैन से बैठकर 80 घाट पर चाय पी ली जाए तो भला इस जालिम दुनिया को ये कैसे मंजूर होगा। मैं बात कर रही हूँ ऐसे लोगों की जिनका बस चले तो अपना काम निकलवाने के लिए ना ये रात को 3 बजे भी आपको कॉल कर ले और पूछ ले आपसे कि अरे सो तो नहीं रही थी ना भैया, इनकी बदौलत मैं तो सोने से रही। बाय द वे, अगर आपकी नींद भी किसी ने यूं ही उड़ाई है तो पिंग मी ऑन माई इंस्टा @RJ अमीशा एंड सुनते रहो 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: नहीं ये नहीं हो सकता। FM, हेलो बनारस को किया है दोस्तों, आप सभी ने ट्यून इन। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं हर रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाऊं? अब तो डांट सुनने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन क्या किया जाए। बनारस का ट्रैफिक ही ऐसा है कि अगर आप एक घंटा पहले निकले हैं ऑफिस के लिए तो आपको एक की जगह एक नहीं डेढ़ दो घंटे लग जाते हैं। और कैसे कोई प्रेडिक्ट कर सकता है यार, मुझे मतलब समझ ही नहीं आता कि आप ऑफिस से आधा किलोमीटर पहले ऐसे घने जाम में अगर फंस जाएंगे तो ऐसी ये जो सिचुएशन है ये कैसे बॉस को समझाई जाए। अगर मेरी बातों से दोस्तों आप भी रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो आज की मेरी एडवाइस ये ट्रैफिक अपडेट आपके लिए ही है। तो अगर आप इस समय राजघाट से होते हुए पड़ाव साइड में जा रहे हैं ना दोस्तों, तो वहां पे आपको मिल सकता है बहुत ज्यादा ट्रैफिक। तो इस ट्रैफिक से बचने के लिए आप कुछ ऑल्टरनेट रास्ता या फिर ढेर सारी जो अपनी प्रिकॉशंस है वो लेते हुए चलिए। और फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए सुनते रहिए आपका अपना 91.2 FM हेलो बनारस। कहे से कि भैया ये हाँ पक्का बनारसी।

काले की याद आ गई। राधिका की माँ और मेरा हनीमून वहीं पर हुआ था। माइंड ब्लोइंग। नो नो नॉट हिम नॉट हिम ओ नो दिस शिट इज गुड बट वी शुड नॉट डू इट रेगुलरली मेकी बॉय कीप ऑफ द ग्रास दिस डॉग इज स्टोन्ड यार।

0: बेटा इसने ब्रेकफास्ट के 20 पाउंड दिए हैं, टिप इंक्लूडेड। अगर तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो मैंने इसे ऊपर वाला कमरा ऑफर कर दिया था एज ए किराएदार। हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए।
1: Can I have my 20 pounds back?

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
4: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।

0: अच्छा
1: अब आपसे बात किए बिना मैं कैसे रह पाती। हेलो बनारस को दोस्तों आप सभी ने किया है ट्यून इन। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हम वो तिलचट्टा पार्टी और कॉकरोच पार्टी की बात कर रहे थे ना, तो उसमें एक रिस्पांस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा आया है, तो चलिए मैं आपको वो सुनवाती हूँ।
2: हेलो, मेरा नाम है सृष्टि पांडे। और भाई अब तो ऐसा लगता है ना कि जब मेरे दिल की बात आरजे अमीषा ने पहले ही आप सबके सामने रख दी है, तो मैं भी बता दूं कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है ना यार कि जैसे रात में मैं सोती हूँ कुछ और सोच के, कुछ और देख के, और सुबह उठते ही इंस्टाग्राम ऐसे धप्पा दे रहा है कि क्यों हिला डाला ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ फिलहाल कुछ दिनों से। और अभी तो फिलहाल में जब मैंने ये देखा कॉकरोच जनता पार्टी, तो फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब हमारे, हम जैसे कॉरपोरेट एम्प्लॉय से ज़्यादा प्रमोशन तो इस कॉकरोच जनता पार्टी के कॉकरोचों की है भाई, जो सीधे किचन से निकल के भाई पार्टी बना रखी है इन्होंने। अभी इसके मिलियंस में फॉलोअर्स जा रहे हैं, मतलब मैं तो मतलब बिग हार्ट फैन हो गई हूँ। मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ, बट लिटरली मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये ट्रेंड देख के।
1: अगर आप भी ऐसे ही अपना ओपिनियन या फिर अपना थॉट देना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर 9839912912 पे एंड कीप लिसनिंग 91.2 FM। हेलो बनारस, दिस इज पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: क्या सोचा था और क्या हो गया। 91.2 FM हेलो बनारस पर मैं हूँ आपकी बन्नी बनारसी। और जब भी मैं अपने लाइफ में शॉर्टकट लेने का सोचती हूँ ना, तो रास्ता मुझे ऐसे घुमा देता है जितना तो आप अपनी महिला मित्र को भी नहीं घुमाते होंगे। पर इस चिलबिलाती हुई गर्मी में आपको ट्रैफिक और परेशान ना करे, इसके लिए पद्मिनी होटल के पास ही मतलब महमूदगंज से होते हुए सिगरा वाले रूट को ना थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि वहां पर आपको जाम मिल सकता है। बाकी सुनते रहो 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।

0: Chef.
1: माना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, पर कम से कम वो चमक तो रही है। 91.2 FM हेलो बनारस को दोस्तों किया है आप सभी ने ट्यून इन। और जैसा कि हम ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें दोस्तों रोज करते हैं, और करते करते कब ये समय बीत जाता है यार, पता ही नहीं चलता। तो अब जब मेरे जाने का समय हो गया है, तो जाते जाते तो आपको पता ही है कि मैं क्या करती हूँ। जाते जाते हम कुछ लाइफ से रिलेटेड एडवाइस पे डिस्कशन करते हैं। हाँ जी, तो आज ना मेरा अपने कलीग्स के साथ ऐसा डिस्कशन हो रहा था कि यार तैयार होके रहना या प्रेजेंटेबल दिखना क्यों जरूरी है। कई सारे रीजंस हम लोगों के अपने अपने हो सकते हैं। किसी को पसंद होगा कि मैं सिर्फ लोअर टी शर्ट में रहूं, दिन भर निकल जाऊं। किसी को पसंद होगा कि मैं बहुत प्रोफेशनली ड्रेसअप होके रहूं, और किसी को शायद इन बातों से फर्क ही नहीं पड़ता होगा। पर दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं आपको बताऊं ना, तो अगर आप थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होके रहते हैं तो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन खुद में आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। और अगर लाइफ, इतनी खूबसूरत लाइफ भगवान ने हमें दी है, तो उसे थोड़ा सज धज के सेलिब्रेट करते हुए रहना चाहिए। क्यों ऐसे मायूस से बिना तैयार हुए बैठे रहना क्यों? अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम @RJAmisha पे DM भी कर सकते हैं। और फिलहाल जो गानों का सिलसिला है वो हेलो बनारस पर यूं ही चलता रहेगा, और बहुत जल्द पर्दे के पीछे में आने वाले हैं RJ सुधांशु आपके लिए, आपसे बातें करने के लिए और ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको बताने के लिए। सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस। दिस इज RJAmisha साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ये है पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
4: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। शुरू हो चुका है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात करेंगे

कन्यादान के बारे में, जिसके मुख्य कलाकार शशि कपूर, अशोक कुमार दादा मोनी पिता की भूमिका में थे, और डेविड अब्राहम, असित सेन, सुधीर दलवी, उमा दत्ता अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। फिल्म का संगीत दिया था मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन द्वारा, जबकि इसके गीतकार हसरत जयपुरी और गोपालदास नीरज थे। वैसे ये फिल्म डायरेक्टर तपन सिन्हा की बंगाली फिल्म आतंक 1965 में आई उसका रीमेक थी। शशि कपूर और अशोक कुमार की ये पहली जोड़ी फिल्म है, यानी कि इसके पहले उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया था। बातें आज चलेंगी सिर्फ कन्यादान के बारे में, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर सुधांशु के साथ। तो बस सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि भैया बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं कन्यादान फिल्म की। कन्यादान फिल्म का एक गाना, लिखे जो खत तुझे।

0: ये गाना लिखा गया था गोपाल दास नीरज साहब के द्वारा। इसके बारे में जुड़ी हुई एक बड़ी ही दिलचस्प घटना मैं आपको बता रहा हूँ। एक गाना लिखा नीरज जी ने, जो दिया जब शंकर जयकिशन को और पढ़ा उनकी लाइनों को, तो उन्होंने कहा यार मजा नहीं आया, बेकार है। तब गोपाल दास नीरज जी ने उनके सामने ही उसको फाड़ के फेंक दिया। वहीं पर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बैठे हुए थे। ऐसे में शंकर जयकिशन ने कहा आपको फाड़ के नहीं फेंकना चाहिए था, वो आप किसी और फिल्म में यूज कर लेते। तब गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि जब जो गाना आपको पसंद नहीं आया वो किसी और को क्यों पसंद आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप इससे बढ़िया लिख लेंगे, तो आप शाम को कल आइए और जो आप कहेंगे वो मैं कर दूंगा आपके लिए, मैं मना नहीं करूंगा। इसके बाद फिर क्या था, नीरज साहब गए और अगले दिन शाम के पहले उनके पास फिर उसी सीटिंग रूम में आ गए और उन्होंने एक लाइन दी पेपर पर लिखा हुआ। जो वो लाइन उन्होंने लिख करके दी, उसे पढ़ते ही शंकर जयकिशन खुश हो गए और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक नीरज जी, मैं यही तो चाहता था। उसकी लाइन यही थी, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में।
1: लिखे जो खत।

तब उन्होंने कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मना नहीं करेंगे, जो मेरा मन होगा वो मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मुझे याद है। वहीं टेबल पर गाड़ी की चाबी रखी हुई थी, शंकर जयकिशन के कार की चाबी, मर्सिडीज। नीरज जी ने वो चाबी उठा ली और शंकर जयकिशन मुस्कुराते रह गए, उन्होंने मना भी नहीं किया। वाकई में बड़ी ही खूबसूरत ये लाइन है और बड़ा ही खूबसूरत गाना बन पाया। सैल्यूट है नीरज साहब को इतना खूबसूरत गाना लिखने के लिए। तो बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर, क्योंकि भैया पर्दे के पीछे यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं

0: थी।
1: फिल्म कन्यादान के बारे में जो 1968 में आई, जिसके डायरेक्टर मोहन सहगल, कलाकार शशि कपूर, आशा पारेख, भैया ओम प्रकाश और साथ में अचला सचदेव, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इसके कहानी की बात करें तो कन्यादान एक सार्थक सामाजिक फिल्म थी जिसमें शशि कपूर, अशोक कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों ने अभिनय किया। और ये फिल्म दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर प्रहार करती है, इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। बातें हमारी और भी चलेंगी सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर, पर्दे के पीछे में, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। सुधांशु के साथ सुनते रहो, क्योंकि भैया यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं 1968 की आई फिल्म कन्यादान के बारे में।

जिसके डायरेक्टर थे मोहन सहगल, मुख्य कलाकार शशि कपूर, आशा पारिख और अचला सचदेव, ओम प्रकाश भैया भी थे। इसका टोटल जो बजट आया था वो था लगभग 15 लाख रुपए। उस दौर के हिसाब से ये एक मिड बजट फिल्म थी। इसमें कलाकारों की फीस, लोकेशन, शूट, म्यूजिक प्रोडक्शन, प्रिंट, प्रमोशन सब कुछ शामिल है। 1960 में 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक का किसी फिल्म के लिए बजट जाना एक आम बात थी। बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए इसने कमाई की थी, जो उस समय के हिसाब से एक सुपर हिट प्रदर्शन माना जाता है और 1968 की टॉप 5 फिल्मों में ये शामिल है। इसने अपने कॉस्टिंग का लगभग 10 गुना दाम निकाल लिया था। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसने ढेर सारी कमाई की, मोर देन एक्सपेक्टेशन। तो आज कन्यादान फिल्म में बस इतना ही। पर्दे के पीछे में अगली बार हम होंगे एक नई कहानी लेकर। तब तक आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, क्योंकि बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: यात्रा।
1: तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है।
2: प्रस्तुत पंक्तियां तन्वीर काजी द्वारा रचित है,
0: पंक्ति यात्रा।
3: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
4: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
3: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: हम की सुबह दुखों की शाम मामूली सी बात पे लड़ना इसका काम
1: फिर भी सब है अपने मिलजुल कर देखे सपने।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
2: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakka.

0: कंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ तो

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: रामचंद्र, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
1: Banaras.
4: 91.2 FM,

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello.
4: Hello.
3: Hello.
2: Hello. Hello. 91.2 FM. Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़ गुरु

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
1: Banaras.
4: 91.2 FM,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ दुर्ग।

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
1: Banaras.
4: 91.2 FM,

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़ पक्का।

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो
4: हेलो

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: गली मोहल्ला मोक्ष मसान
1: कचौड़ी जलेबी आटा पिसान
0: बाजार ठटेरी लंगड़ा आम
1: लंका अस्सी बनारसी पान
0: गिरजा को दई बिस्मिल्ला खान।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अ लड़का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,